0: आप सुन रहे हैं प्रॉग कोर रेडियो, द ओनली ट्रू प्रॉग रॉक एंड इंडी स्टेशन इन मॉन्ट्रियल।
1: प्रॉग कोर रेडियो, द ओनली स्टेशन इन मॉन्ट्रियल डेडिकेटेड टू द प्लेइंग ऑफ प्रॉग रॉक एंड इंडी म्यूजिक।